0: My name is Shireen.
1: My name is Abdul Rahman.
2: My name is Sai Mudashir.
3: This is Rahul.
4: You are listening to Link FM 96.7.
5: Are you a taxi or private hire driver in Rotherham or Sheffield? Have you been involved in an accident? The claim team on Kimberworth Road, Rotherham is here to help you. We pay a £2,000 referral fee for non-fault taxi claims. Call us today on 0330 057 1009. That's 0330 057 1009. The claim team is here to help you get back on the road. Terms and conditions apply.
6: ITEC Commercial Refrigeration and Air Conditioning. अगर आपको रेस्टोरेंट टेक अवे दुकानों और तमाम कमर्शियल फ्रिज फ्रीजर कोल्ड रूम और एयर कंडीशन की सर्विस और रिपेयरिंग की जरूरत है तो ITEC Commercial Refrigeration and Air Conditioning की तजुर्बाकार टीम आपके लिए हाजिर है ITEC Commercial Refrigeration and Air Conditioning Contact number 07955198814 and 07955198824.
7: क्या आप किसी तकरीब का एहतमाम कर रहे हैं? शादी, मेहंदी, मिलाद शरीफ या खत्मे कुरान, छोटी महफिल हो या बड़ा इज्तिमा, याद रखें, शाहिद केटरिंग सर्विस 30 साल से ज़ायद तजर्बे के साथ हम 30 से 5000 अफराद तक की तकरीबात के लिए मियारी और लजीज खाने का बेहतरीन इंतजाम करते हैं। हमारे यहाँ प्रोफेशनल केटरिंग स्टाफ सर्विस भी दस्तयाब है ताकि आप बेफिक्र होकर अपनी तकरीब एंजॉय करें बेहतरीन मियार जायका और बाएतमाद सर्विस यही हमारी पहचान है राबता करें 07796510422 या विजिट करें शाहिद केटरिंग सर्विस पाकिस्तान मुस्लिम सेंटर शेफील्ड आपकी खुशियों का बेहतरीन इंतखाब
8: By advertising your products and services with a memorable campaign here on Link FM. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed, so find out more today. For details, click on linkfm.org or WhatsApp 07939 849 339.
9: Sheffield's very own community radio station.
10: Link FM.
0: My name is Shireen.
1: My name is Abdul Rahman.
2: My name is Sai Mudashir.
3: This is Rahul.
9: Anywhere you go, Link FM is always there with you. Listen online at linkfm.org.
10: Link FM.

0: future is already here. We play your favourite music every day. 96.7
1: Link FM.
2: अब ना तुम वो रहोगे ना मैं वो रहूंगी ना हम वो रहेंगे.

0: listening to Link FM.
1: Assalamu alaikum, main hoon Naeem Azharvi aur tum sun rahe ho Link FM.
2: From residential and commercial conveyancing to wills, probate and immigration matters, we've got you covered. We have multilingual staff to support you and amazing feedback, busier solicitors, legal expertise you can trust. Visit us at 61 Bellhouse Road, Sheffield, or call 0114 308 2727. Nazir Solicitors is trading style of affinity, 7 Law Solicitors, regulated by Solicitors Regulation Authority.
3: अगर आपकी टैक्सी, मिनी कैब, प्राइवेट किराए पर लेने वाली गाड़ी या प्रेस्टीज कार हादसे का शिकार हुई है, आपको क्लेम टीम से बात करने की जरूरत है। वह मुकामी माहिरीन जो शेफील्ड और आसपास के इलाकों में मुतबादिल गाड़ी तेजी से मुहैया कर सकते हैं। क्लेम टीम अपने दावे के मुताबिक £2,000 तक रेफरल फीस अदा करते हैं। 0330571009 पर कॉल करें। क्लेम टीम रोदरहम को ऑनलाइन, फेसबुक या theclaimteam.uk पर तलाश करें।
4: Do you want to make a difference in your community? Join the Interfaith Network in South Yorkshire and help raise awareness about early onset type 2 diabetes in young people aged 18 to 39. Diabetes affects millions across the UK, with ethnic minority groups often at higher risk. The NHS South Yorkshire Integrated Care Board and the Pakistan Muslim Centre in Sheffield

0: 07419 299 729.
1: Nayab's Takeaway in Sheffield
2: is your perfect one-stop food hub. With an excellent array of succulent foods such as flame-grilled starters, Asian-style pizzas to your table at your home.
1: Nayab Takeaway.
2: Deals will keep you coming back for more.
1: Just get khanon ke liye. Or visit nayabsonline.co.uk.
3: जे होएगी एक्सीडेंट फिकर ना करो फटाफट द क्लेम टीम की फोन करो अगर तुम टैक्सी चलाने हो तुम प्राइवेट हाथ चलाने हो या फिर कोई किराए की गड्डी ना एक्सीडेंट हो गया है तो द क्लेम टीम तुम्हारी खिदमत में हाजिर है जेडे शफील्ड दादरम गिरदो नवाले इलाके में टैक्सी ते प्राइवेट हायर गड्डी तुम मुहैया करने द क्लेम टीम अपने वादे ने मुताबिक 2000 पाउंड तक रेफरल फीस भी देने ने उन्होंने फोन नंबर है 03300571009 या विजिट करो 78 Kimberworth Road, Rotherham.
4: Bringing communities together. Broadcasting from the Pakistan Muslim Centre, Link FM. Link FM.
5: By advertising your products and services with a memorable campaign here on Link FM. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed, so find out more today. For details, click on linkfm.org or WhatsApp
6: 07939-849-339. Tu sab ka hai khuda, tu sun meri dua, ye toota dil mera tadpata hi raha hai sada.
7: This is Ahmed Hussein and you're listening to Link FM.
8: My name is Shireen.
9: My name is Abed Rahman.
10: My name is Sai Mudashir.
11: This is Rahul.
4: Anywhere you go, Link FM is always there with you. Listen online at linkfm.org.
12: Link FM.

0: listening to Link FM 96.7.
1: Are you a taxi or private hire driver in Rotherham or Sheffield? Have you been involved in an accident? The claim team on Kimberworth Road, Rotherham is here to help you. We pay a £2,000 referral fee for non-fault taxi claims. Call us today on 0330 057 1009. That's 0330 057 1009. The claim team is here to help you get back on the road. Terms and conditions apply.
2: iTech Commercial Refrigeration and Air Conditioning. अगर आपको रेस्टोरेंट, टेक अवे, दुकानों और तमाम कमर्शियल फ्रिज फ्रीजर कोल्ड रूम और एयर कंडीशन की सर्विस और रिपेयरिंग की जरूरत है तो आईटेक कमर्शियल रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग की तजुर्बाकार टीम आपके लिए हाजिर है आईटेक कमर्शियल रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग कॉन्टेक्ट नंबर 07955198814 एंड 07955198824।
3: क्या आप किसी तकरीब का एहतमाम कर रहे हैं? शादी, मेहंदी, मिलाद शरीफ या खत्मे कुरान, छोटी महफिल हो या बड़ा इज्तिमा, याद रखें, शाहिद केटरिंग सर्विस 30 साल से ज्यादा तजर्बे के साथ हम 30 से 5000 अफराद तक की तकरीबात के लिए मियारी और लजीज खाने का बेहतरीन इंतजाम करते हैं। हमारे यहाँ प्रोफेशनल केटरिंग स्टाफ सर्विस भी दस्तयाब है ताकि आप बेफिक्र होकर अपनी तकरीब एंजॉय करें। बेहतरीन मियार, जायका और बाएतमाद सर्विस, यही हमारी पहचान है। राबता करें 07796510422 या विजिट करें शाहिद केटरिंग सर्विस, पाकिस्तान मुस्लिम सेंटर, शेफील्ड। आपकी खुशियों का बेहतरीन इंतखाब।
4: By advertising your products and services with a memorable campaign here on Link FM. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed, so find out more today. For details, click on linkfm.org or WhatsApp 07939 849 339.
5: Sheffield's very own community radio station.
6: Link FM.
7: My name is Shireen.
8: My name is Abed Rahman.
9: My name is Sai Mubashir.
10: This is Rahul.
5: Anywhere you go, Link FM is always there with you. Listen online at linkfm.org.
6: Link FM.

ये है लेकिन मर्द ऐसा छुपा जिसमें लाजे गर्दिशे चरखे कौन भी है, छुपा जिसमें लाजे गर्दिशे चरखे कौन भी है। जलाना

0: मन भी है ये जो सोजा हो तो शमाए अंजमन भी है। बड़ा जी मैंने तीन शेर आपके सामने पेश किए हैं, बात मोहब्बत की है। अल्लामा साहब ने इससे चूंकि बंद आखिरी वो कंक्लूजन तक पहुंचे हैं, वो नज़म का इख्तिताम हो रहा है, तो याद रखें कि शायरी के अंदर जो है या आम मजमून के अंदर भी आप देखें कि जो आखिरी सतरें होती हैं, आखिरी जो लाइनें आदमी लिखता है वो उस सारे निचोड़ पेश करना चाहता है। कोई किताब लिख रहा है, उस किताब के आखिरी हिस्से के अंदर आप देखें, आखिरी जो चैप्टर होगा उसके अंदर वो काफ़ी चीज़ें जो है वो निचोड़ वहाँ पर बयान करेगा कि मेरा लुब्बे लबाब क्या है, मेरा मकसद इस तसनीफ लिखने का क्या मकसद क्या है। बहरहाल शायर जो है वो तकरीबन एक बंद के आखिरी हिस्से जो होते हैं और एक शेर की जो जिस हम पंजाबी में लिखते हैं हमारी जो है वो रुबाइयाँ होती हैं, वैसे ये रुबाई जो है वो चार कलियों पर भी होती है, आगे कुछ जो है वो आपके मुसद्दस भी होते हैं, मुफ्तीद की भी अपनी तरतीब है, बेशुमार और भी पंजाबी पटवारी के अंदर ये तरीके से लिखे जाते हैं। लेकिन मैं ये कहने का मकसद ये है कि आपने जो हिस्सा होता है ना आखिरी जो बंद शेर होते हैं वो असल में उसका लुबे लबा है। एक शायर जो है वो नतीजा निकालना चाहता है, रिजल्ट चाहता है कि मैंने ये काम किया किस मकसद के लिए किया है। तो कहते हैं कि ये जितनी भी चीज़ें हैं जो भी नतीजे पर मैं पहुंचा हूं वो मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि दुनिया के अंदर एक ही चीज है वो है मोहब्बत। ऐसी चीज है जो किसी से की जाती है, जो जिस चीज से की जाती है और जो आदमी खुद वो चीज करने वाला उसको मुहिम कर है और दरमियान मोहब्बत है। मोहब्बत एक बहुत बड़ी चीज है, इस मोहब्बत उसको ये इस नज़म के अंदर यह है एक दश्त का कि दश्ते यानी मोहब्बत। अल्लामा साहब ने इस मोहब्बत को ये समझाने की कोशिश की है कि अगर इंसान ये समझे कि मोहब्बत एक बहुत बड़ा बियाबान जो है ऐसी जगह होती है जहां पर कुछ चीज जो है वो आपको सैरा मिलेगा, कुछ सोते होंगी, परेशानियां हैं, तकलीफें हैं, पानी नहीं है, ये एक वीरान एक ऐसी चीज है। कहने का मकसद ये चाहते हैं कि दुनिया के अंदर जो कुछ भी है इस दुनिया में अब वीराने के अंदर उसके अंदर आप देख लें वहां पर होंगे, वहां जिंदगी होगी, गुर्बत का मतलब प्रदेश जिंदगी होगी, वो जिंदगी होगी, वहां पर मुसीबतें होंगी। कि हो सकता है कि जब इंसान के दिल के अंदर वो मोहब्बत है, जब उसके अंदर मोहब्बत है, मोहब्बत की उस सहरा में वो रहता है, मोहब्बत के ब्याह के अंदर वो रहता है, फिर वो तकलीफें जो है वो तकलीफ नहीं है, फिर उसकी जो परेशानियां जिसकी मोहब्बत ये तकलीफें काट रहा है, ये मुसीबतों के में मुबतला है, उसको ये जरूर उम्मीद है कि इन मुसीबतों में गिरने के बाद मुझे एक वक्त आसानी में इजर फराक के मंजर से निकलने के बाद मुझे वसल होना है, मुझे दीदार, मैंने महबूब से मिलना है, मैंने महबूब को देखना है, महबूब ने मुझे इनाम देना है, महबूब ने मुझे अपने साथ बैठाना है। ये बहुत बड़ी बात है। जब इंसान को वो मंजर नजर हो तो फिर वे सारी तकालीफ उसकी तकालीफ नहीं रहती, और ये तकालीफ जो होती हैं ये इस इंसान की बेहतरी के लिए होती हैं, इसको बेहतर बनाने के लिए होती हैं, इसको सीधा करने के लिए होती हैं। कभी कभार ये कहा था कि अगर चीज़ थोड़ी बहुत ही डिंगी त्रेडी हो है, उसकी सीधा कर उसकी तराशा जाना, फिर उसकी रंधे पर डाने आ, ये बहुत सारे कम होने हैं, उस बाद फिर वो चीज़ जी है दरवाजे की लगनी पता लगना इस चीज़ को लगी। इसका मतलब ये है कि ये बहुत चीज़ें बहुत कुछ करना पड़ता है और ये मोहब्बत का मैदान है। अब अल्लामा साहब जो है वो ये कहना ये चाहते हैं, ये सारी चीज़ें बताना चाहते हैं कि अल्लामा साहब ये कहते हैं कि ये मोहब्बत जो है ये मोहब्बत ही वो मंजिल है कि मंजिल भी है सहरा भी। اب منزل جو ہے یہ دو لفظ کی استعمال ہوتا ہے. ایک منزل وہ ہوتی ہے کہ جب یہاں سے چلنا شروع کریں تو آپ سمجھیں کہ میں نے فلاں وہ ایک منزل کہا جاتا ہے کہ میں جب پہنچنا وہ منزل ہے. ایک جو منزل کہتے ہیں یہ یعنی اس یعنی جس میں جہاں پر اس کو بھی کچھ لوگ منزل کہتے ہیں. اللہ کہنا چاہتے ہیں علامہ صاحب سمجھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ محبت جو ہے یہی وہ منزل ہے, یعنی یہی وہ جگہ ہے, یہی وہ چیز ہے, یہی جس پر ہی اس بندے نے رہنا بھی ہے, گزارا بھی یہاں پر کرنا ہے, سب کچھ یہی ہے. اس کو گھر سمجھ لے تب بھی ٹھیک ہے, اسے پچھلی شہر پاس وہ اس کو گھر سمجھ لے, وہ کبھی وطن کا درجہ دے آپ کو دے گا, وطن میں سکون پردیش کے اندر ہے جس طرح سے ہم رہتے ہیں یا اور بشمار لوگ ہیں. پردیش کے اندر جو ہے پریشانیاں ہیں, پردیش کے اندر مشکلیں ہیں, تکالیف ہیں, پردیش کے اندر جو ایک ہے, جبکہ دیش کے اندر جو ہے وہ جدائی نہیں ہے. اب یہ جدائی اس انسان کے لیے جو ظاہری ہے, چونکہ ہم اپنے ملک سے آتے ہیں ہمارے لیے یہ جدائی بڑی مشکل ہے. ایک اور انسان ہے اس کی جدائی جو ہے وہ اپنی وہ کسی اور جگہ سے آیا ہے اس کی اپنی جدائی. تو یہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ علامہ صاحب فرماتے ہیں کہ محبت ہی وہ منزل ہے کہ منزل بھی ہے اور سہرا بھی, لیکن وہ منزل اور منزل نہیں ہے. آپ یہ سمجھے کہ وہ بے آب ہو گیا, وہاں پر ریگستان ہے, وہاں پر تکلیف ہے, وہ پریشانیاں ہیں سب ہے, لیکن عاشق کے لیے سسی جو ہے وہ پلوں کی تلاش میں کس طریقے سے اس نے تھر کا راستہ اختیار کر لیا, پھر وہاں پر جو وہ راستہ اس کو بھول گئی, پھر وہاں پر وہ کس طریقے سے جو ہے وہ جو اپنے محبوب کی تلاش میں آخر اس نے اپنی جان دے دی. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو محبت ہے یہ ایک منزل بھی ہے, صحرا بھی ہے, سب کچھ ہے, سب کچھ ہے, سب مشکل ہے, سب تکالیف ہے, سب کچھ ہے, لیکن تکالیف سے ہی پریشانیوں کا جو ہے وہ علاج نکلتا ہے. یہاں اس کے جواب کے اندر جو ہے یہاں تکلیف کے بعد آدمی جو ہے, دیکھیں دنیا کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں کوئی کام کریں گے تکلیف والا تو آسانی تو صورت میں ملے گی نا, تکلیف سے نکلیں گے تو پھر آسانی ملے گی. یہی امید سے انسان جو ہے وہ چلتا ہے. اور علامہ صاحب کہتے ہیں کہ محبت جو ہے یہی ایک پیغام ہے, اور کہتے ہیں کہ یہ جرس بھی ہے. جرس کہتے ہیں وہ گھنٹی کو, گھنٹی ایک اناؤنسمنٹ ہوتا ہے. یہ اس وقت پرانے وقت میں ہوتا تھا کہ جب قافلہ جو قافلے والے جو تھے, قافلے والے مثلا 2-4 ہزار آدمی جو تھا وہ اکٹھا سفر کرتا, ایک دوسرے ملک میں جانے کے لیے اکٹھے سفر کرتے, اس کے اندر وہاں پر وہ کوئی آدمی اپنا لیڈر بھی بنا لیتے, اس کے بعد جو ہے پھر ایک آدمی وہ اناؤنسمنٹ کرتا, اسپیکر نہیں ہوتے تھے, اس وقت گھنٹی بجاتا, ہو سکتا ہے کچھ ایسا فائر کرتا, کچھ ایسی آکشن کرتا, کوئی ایسا طریقہ کار کرتا تاکہ وہ قافلے والے جو سوئے ہوئے ہیں جو آگے پیچھے ہیں وہ جاگ جائیں, ان کو پتہ چل جائے کہ قافلہ روانہ ہو رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ سوئے ہوئے جو چیز استعمال جاتی ہے وہ گھنٹی اس کو کہتے ہیں. تو علامہ صاحب کہتے ہیں کہ یہ محبوب چیز ہے, یہ ایک گھنٹی کی بھی, دیکھیں یہ جو ابھی ہم بات کر رہے ہیں علامہ صاحب نے جو شاعری کی ہے, مجھے یہ بتائیں اپنا کام کاج چھوڑ کر انہوں نے سب کچھ چھوڑ کر جو اس شاعری کو کیوں اپنایا, یہ اس فیلڈ کو کیوں اپنایا, کہ محبت کی وجہ سے, ایک پیار عشق کی وجہ سے. اور یقین کر سو اپنی زبان گلے اتنے اور اثر کوئی نہیں رہنا جی. یہ خاص بتانا چاہتا ہوں, یہ ایک ایسا بزنس ہے, یہ ایک ایسا بزنس ہے جس میں سے آپ کو اثر کچھ نہیں ہوتا, لیکن سے بہت کچھ. بس یہ بات جو ہے نا یہ پھر کبھی بتاؤں گا کہ جب اصل کوئی پھر اصل بہت زیادہ کیسے حاصل ہوتا ہے. بس یہ انشاءاللہ بعد میں بات مضمون پھر چلا جائے گا. یہ گھنٹی بھی ہے, یہ محبت کی ہی ایک گھنٹی کی آواز ہے, محبت ہی جگاتی ہے, محبت کی. علامہ صاحب سوئی کو کیوں جگا رہے ہیں جی, وہ سوئے لوگ ان کو کیا ہے, وہ اپنے گھر میں رہ رہے ہیں, بڑے پی ایچ ڈی ہے, بڑے پڑھے لکھے ہیں, ان کو کیا ضرورت ہے دوسرے کی. جس سے آج ہم سمجھتے ہیں کہ میرے پاس کھانا موجود ہے, سب کچھ ہے, یاشی ہر چیز ہے, ہمیں دوسرے کی پریشانی کی کیا ضرورت ہے پریشانی کرنے کی. وہ چھوڑو جی, دو اپنے کمے کی تو ٹھیک کرو. کبھی کبھار ہم دیکھیں باتیں کرتے ہیں تو یہ کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری محبت کا معیار نہیں ہے, بلکہ ہمارا نفرت کا معیار, حسد کا معیار بہت زیادہ ہے. ہم چاہتے ہیں کوئی تھوڑا سا آگے چلا جائے. और उस वक्त लोग थे वो साथ चलाते, वो कारवां जो है वो कहते मोहब्बत एक कारवां भी है। अब मोहब्बत घंटी भी होगी, जगा जगाने वाली भी होगी, वो जगा भी रही है। मोहब्बत एक वो मकाम हासिल कर रही है, मोहब्बत जो है एक मकाम कारवां वाला कर रही है, सारे इकट्ठे चला रही है, मुतहद इत्तेफाक के साथ इकट्ठे चलने की दावत दे रही है। आगे लफ्ज़ फरमाते हैं रास्ता दिखा रही है, इस रास्ते पर चलोगे मंजिल पर पहुंच जाओ, इस रास्ते से भटक जाओगे तो फिर खत गड़बड़ हो जाएगा। लेकिन साथ ये कहते हैं कि ये राजन भी है। अब जो है रब होता है रास्ता दिखाने वाला जी, और राजन वो होता है जो रास्ते में लूटने वाला जी। अब ये लूट भी लेती है, अब ये लूटने का जो कंसेप्ट है ये भी फकर के अंदर और इश्क वालों के अंदर भी दो किस्म के हैं। एक तो लूटता है चोर, बाहर से आया सबको लूट लूट के सूट करके सबको ले गया, कुछ ना हुआ बचा। अब वो जो लूटने वाला है वो भी मोहब्बत है, उसकी मोहब्बत क्या है, दौलत के साथ है, पैसे के साथ है, जुल्म ज्यादती के साथ है वो एक अपना। और क्या हुआ कि वो आदमी जो था उसको खत्म कर गया, कुछ उसके पास कुछ ना बचा, सब कुछ लेकर चला गया, भाग गया, उसका नुकसान कर गया। अब जो दूसरा जो आशिक लोग कहते हैं कभी कभी महबूब जो है वो उसके दिल पर जो है वो डाका डाल लेता है। अब उस महबूब का दिल जो दिल के अंदर जितने भी ख्वाहिशें हैं वो उठा कर ले जाता है, उसके पास कुछ नहीं बचता। अब जो कुछ है वो महबूब के पास है, और यही जो है ये जो मोहब्बत के बारे में ये कहा जाता है कि बस जो है वो इस तरह हुआ। कभी कभार बेशुमार शेर शायरी के अंदर भी बेशुमार आपने देखे होंगे, ये कंसेप्ट भी यही है कि महबूब जब मेरे दिल में बस गया, जब मेरे दिल में आ गया, इस उसके आने से पहले बड़ी ख्वाहिशें थी मेरे दिल में, मैंने भी दुनिया में बहुत कुछ करना था, बहुत कुछ करने का प्लान था, बहुत एक और मंजिल पर मैं चल रहा था, पता नहीं किधर किधर मैं क्या क्या क्या से क्या कर होना चाहता था। लेकिन जब महबूब ने आकर यहाँ पर डेरा जमा लिया, महबूब ने यहां आकर मुझे लूट लिया, तो फिर मेरा कुछ ना बचा, फिर मेरा कुछ ना बचा। अब मेरे पास तो कुछ नहीं है, जो कुछ है मेरे महबूब के पास है। अब मुझे वो कहता है कि बैठ जाओ, मैं बैठ जाता हूं, मुझे कहता है खड़े हो जाओ, मैं खड़ा हो जाता हूं, मुझे कहता है कि बस इधर बाहर आपने बैठना, मैं बाहर बैठ जाता हूं। महबूब कहता है खाना नहीं खाना, मैं खाना खाना खत्म कर देता हूं। कहने का मकसद ये है वो कभी कभार ये मोहब्बत जो है ये रूप भी धार लेती है। लेकिन लमसा फरमाते हैं जितने भी रूप धारे, जितने भी किसी को लूट लिया है, और दूसरी बात ये भी है कि जाहिर तौर पर है एक आदमी को नुकसान हो गया, चलो किसी के पैसे गुम हो, कुछ चीज गुम हो गई, आज तो हम पता नहीं किस किस को जो है वो अल्जाम मुर्दे अल्जाम ठहराएंगे, पता नहीं क्या क्या शिकवे नऊज़ बिल्लाह अल्लाह ताला तक ले जाएंगे, ये हुआ वो हुआ। लेकिन अगर दूसरी साइड ये देखो कि यार ये दोनों तो मेरी थी नहीं, मुझे तो अल्लाह की थी, अल्लाह ने ले लिया, बस वो चली गया किसी तरफ से, तो मुझे अल्लाह ताला सब्र शुक्र अता फरमा, हो सकता है कि ये चीज़ें। दूसरी बात एक शरी मसला ये भी है कि अगर कोई आदमी का नुकसान ज़ाहिरी तौर पर होता है, ये दुनियावी को नुकसान किसी आदमी का हो गया, फ़ायदा नहीं है, तो वो ये कहते हैं कि उस वो नुकसान जो है हो सकता है बड़े नुकसान से बचने का एक रास्ता अल्लाह ताला ने कर दिया है। एक मतलब एक चीज़ होगी कि फर्ज एक बंदे का बहुत बड़ा नुकसान होना था, छोटा मोटा नुकसान हो गया, चलो दूसरी बात यह है कि उसके अंदर नुकसान जब उसका होगा तो उसके दिल के अंदर दर्द आएगा, उसके अंदर एक तकलीफ होगी, शायद वो रास्ते पर भी फिर जो है चल पड़े। तो बेशुमार चीज़ें पर लामा साहब की जो बात है वो ये है कि मोहब्बत ही वो मंजिल है, कि मंजिल भी है सहरा भी, जरस भी कारवां भी, राब भी राजन भी है। लामा साहब फरमाते हैं कि ये किसी भी दर्जे पर चली जाए, मोहब्बत का कोई भी त्रिकार हो, कोई भी रूप हो, लेकिन ये मोहब्बत मोहब्बत है। मोहब्बत जो है वो जब आप, और एक और नुकता यहाँ पर ये है, एक एक अहल इश्क है, आशिक है, जब महबूब के रास्ते पर चल पड़ता है, फिर वो उसका जो सहरा है, जो उसका वतन है, जो उसका देश है, जो उसका गिनती है, जो कुछ भी है, वो ये समझता है कि सब कुछ जो कुछ मर्जी है। लेकिन अल्लामा साहब ये कहना ये चाहते हैं और अहल इश्क ये कहते हैं कि वो सब चीज़ें तकालीफ उसके लिए आसाइशें बन जाती हैं, क्योंकि उसकी मंजिल जो है महबूब से मिलने की है। बल्कि वो जान भी जा रही होती है फिर भी खुशी से जान दे रहा होता है, उसको पता है कि मैं तो महबूब से अभी मेरी मुलाकात होना है। वो तो और ज़ाहरी तौर पर भी जो लोग हैं जो आम लिहाज के मुताबिक जो हैं वो चल रहे हैं, आम लिहाज में अगर किसी आदमी को मकसूद हासिल होना हो रहा हो, यानी देखना कोई आदमी है कोई एक दुनियादारी के काम में भी अगर बिल्कुल वो सख्त किस्म की پریشانی میں بھی اس کے باوجود جب اس کو پتا ہے یہ کامیابی ملنے والی ہے, ہو سکتا ہے وہ کھڑا ہو جائے. تو بہرحال یہ ایک الگ بحث ہے. علامہ صاحب جو ہیں وہ محبت کو کہہ رہے ہیں کہ محبت بھی ایک ایسا سسٹم ہے, ایسا طریقہ کار ہے. لیکن یہ کہتے ہیں کہ مرض کہتے ہیں اس کو, یہ لیکن ہے مرض ایسا چھپا جس میں اللہ جی گردش چرخے کون بھی ہے. لوگ کہتے ہیں کہ یہ مرض ہے, کہتے ہیں مریض محبت ہے جی, محبت ہی پہ گیا, یہ عاشق ہے جی, عاشق ہو گیا جی, یہ کپڑے پھاڑی سٹے سے ایئر سسٹم کی تا. یہ لوگ یہ سمجھتے ہیں یہ مرض ہے, یہ محبت جو ہے کہ مرض کا, یہ کہتے ہیں کہ یہ محبت جو ہے ایسی بیماری ہے جی. تو وہ دنیا کی بات علماء صاحب کہتے ہیں, لیکن بالکل اس کو بیماری سمجھا جائے تو علماء صاحب سمجھتے ہیں کہ یہ بیماری اگر کسی کو لگ جائے تو پھر کئی ایسی بیماریاں ہیں جو اس کی تقدیر میں ختم ہو جاتی ہیں. بے شمار بیماریوں کا یہ علاج ہے. پر یہ بات جو پھر ہم آگے لے کر چلیں گے انشاءاللہ. ابھی بریک کا پھر ٹائم ہو چکا ہے, اور اس کے بعد اگلا جو حصہ ہمارا ہے وہ میاں صاحب کی شاعری کا ہے. انشاءاللہ اگلے ہفتے پھر یہ پروگرام دے کر حاضر ہوں گے. غلطی کی معذرت جی, ملتے ہیں بریک کے بعد. کی مثال دے دیں کہ محبت اور پیار کی وجہ سے کتنی تکلیف اٹھاتے تھے.
1: Listen to Link FM on the move by downloading the Link FM app.
2: Do you want to make a difference in your community? Join the Interfaith Network in South Yorkshire and help raise awareness about early onset type 2 diabetes in young people aged 18 to 39. Diabetes affects

0: 07419 299 729.
1: Nayab's Takeaway in Sheffield
2: is your perfect one-stop food hub with an excellent array of succulent foods such as flame-grilled starters, Asian-style pizzas to your table at your home.
1: Nayab Takeaway.
2: Deals will keep you coming back for more.
1: Jiske khane ke liye sab. Visit nayabsonline.co.uk.
3: जे होएगी एक्सीडेंट फिकर ना करो फटाफट द क्लेम टीम की फोन करो अगर तुम टैक्सी चलाने हो तुम प्राइवेट हाथ चलाने हो या फिर कोई क्राइम की गड्डी ना एक्सीडेंट हो गया है तो द क्लेम टीम तुम्हारी खिदमत में हाजिर है जेडे शफील्ड दादरम गिरदो नवाले इलाकों में टैक्सी ते प्राइवेट हायर गड्डी तुम मुहैया करने द क्लेम टीम अपने वादे ने मुताबिक 2000 पाउंड तक रेफरल फीस भी देने ने उन्होंने फोन नंबर है 03300571009 या विजिट करो 78 किंबरवर्थ रोड रादरम.
4: Bringing communities together. Broadcasting from the Pakistan Muslim Center, Link FM. Link FM. By advertising your products and services with a memorable campaign here on Link FM. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed, so find out more today. For details, click on linkfm.org or WhatsApp
5: 07939-849-339. तू सुन मेरी दुआ ये टूटा दिल मेरा तड़पता ही रहा है सदा.
6: This is Ahmed Hussein and you're listening to Link FM.
7: My name is Shireen.
8: My name is Abdul Rahman.
9: My name is Shai Mudashir.
10: This is Rahul.
1: Anywhere you go, Link FM is always there with you. Listen online at linkfm.org.
11: Link FM.

प्रोग्राम को खुश आमदेद कहते हैं एक बार फिर। प्रोग्राम है कवाली शो और मैं हूं फैसल याकूब सुल्तानी और खूबसूरत कवाली का सिलसिला जारी है। मुख्तलिफ कलाम आप सुन रहे हैं और अब चलते हैं अगले कलाम की तरफ।

0: listening to Link FM 96.7.
1: Are you a taxi or private hire driver in Rotherham or Sheffield? Have you been involved in an accident? The claim team on Kimberworth Road, Rotherham is here to help you. We pay a £2,000 referral fee for non-fault taxi claims. Call us today on 0330 057 1009. That's 0330 057 1009. The claim team is here to help you get back on the road. Terms and conditions apply.
2: iTech Commercial Refrigeration and Air Conditioning. अगर आपको रेस्टोरेंट टेक अवे दुकानों और तमाम कमर्शियल फ्रिज फ्रीजर कोल्ड रूम और एयर कंडीशन की सर्विस और रिपेयरिंग की जरूरत है तो आईटेक कमर्शियल रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग की तजुर्बाकार टीम आपके लिए हाजिर है आईटेक कमर्शियल रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग कांटेक्ट नंबर 07955198814 एंड 07955198824
3: क्या आप किसी तकरीब का एहतमाम कर रहे हैं शादी मेहंदी मिलाद शरीफ या खत्मे कुरान छोटी महफिल हो या बड़ा इज्तिमा याद रखें शाहिद कैटरिंग सर्विस 30 साल से ज्यादा तजुर्बे के साथ हम 30 से 5000 अफराद तक की तकरीबात के लिए मियारी और लजीज खाने का बेहतरीन इंतजाम करते हैं हमारे यहाँ प्रोफेशनल कैटरिंग स्टाफ सर्विस भी दस्तयाब है ताकि आप बेफिक्र होकर अपनी तकरीब एंजॉय करें बेहतरीन मियार जायका और बाएतमाद सर्विस यही हमारी पहचान है राबता करें 07796510422 या विजिट करें शाहिद कैटरिंग सर्विस पाकिस्तान मुस्लिम सेंटर शेफील्ड आपकी खुशियों का बेहतरीन इंतखाब
4: By advertising your products and services with a memorable campaign here on Link FM. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed, so find out more today. For details, click on linkfm.org or WhatsApp 07939 849 339.
5: Sheffield's very own community radio station.
6: Link FM.
7: My name is Shireen.
8: My name is Abdul Rahman.
9: My name is Sai Mudassir.
10: This is Rahul.
5: Anywhere you go, Link FM is always there with you. Listen online at linkfm.org.
6: Link FM.

कर रहा हूँ तो इस वक्त आपकी और मेरी बात नहीं हो सकती, तो कोशिश किया करें कि अगर कहीं भी अगर आपको कोई ख़ास कलाम सुनना है तो आप मैसेज कर दिया करें, ताकि वो हम इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में आपके लिए शामिल कर लेंगे जब हम दोबारा रिकॉर्ड करवाएंगे। ब्रेक के बाद अब चलते हैं, सिलसिला जारी रखते हैं और चलते हैं अगली कवाली की तरफ।

0: keep listening to Link FM for the latest local, national and international news. Link FM, Sheffield.
1: बच्चों की हिफाजती वैक्सीन आपके बच्चों को बेहतरीन तहफ्फुज़ फराहम करती हैं और हर साल इंग्लैंड में 5000 से ज़ायद अमवात को रोकने में मददगार साबित होती हैं। बचपन की बीमारियां, संगीन अमराज, अस्पताल में दाखिले और उम्र भर की माजूरी का बाइस बन सकती हैं। खसरा और काली खांसी जैसी बचपन की बीमारियां अब भी मौजूद हैं और हमारी कम्युनिटीज में तेजी से फैलती हैं। अगर आपके बच्चे को वैक्सीन नहीं लगी तो वो महफूज नहीं। NHS की जानिब से फराहम की जाने वाली तमाम बचपन की वैक्सीन दुनिया भर में लाखों बच्चों को दी गई है और उनका हिफाजती रिकॉर्ड बेहतरीन है। बेहतरीन तहफ्फुज के लिए वैक्सीन वक्त पर लगवाना निहायत जरूरी है, लेकिन अगर आपके बच्चे की कोई वैक्सीन रह गई है तो अपने GP डॉक्टर से राब्ता करके उसे मुकम्मल करवाएं। क्या आपके बच्चे की वैक्सीन वक्त पर लग चुकी है? उनकी रेड बुक चेक करें या उनके GP से बात करें। मजीद मालूमात के लिए विजिट करें nhs.uk/childhoodvaccinations।
2: This is-

0: listening to Link FM.
1: Assalamu alaikum, main hoon Naeem Azharvi aur tum sun rahe ho Link FM.
2: From residential and commercial conveyancing to wills, probate and immigration matters, we've got you covered. We have multilingual staff to support you and amazing feedback, busier solicitors, legal expertise you can trust. Visit us at 61 Bullhouse Road, Sheffield, or call 0114 308 2727. Nazir Solicitors is trading style of Affinity 7 Law Solicitors, regulated by Solicitors Regulation Authority.
3: अगर आपकी टैक्सी, मिनी कैब, प्राइवेट किराया पर लेने वाली गाड़ी या प्रेस्टीज कार हादसे का शिकार हुई है, आपको क्लेम टीम से बात करने की जरूरत है। वह मुकामी माहिरीन जो शेफील्ड और आसपास के इलाकों में मुतबादिल गाड़ी तेजी से मुहैया कर सकते हैं। क्लेम टीम अपने दावे के मुताबिक 2000 पाउंड तक रेफरल फीस अदा करते हैं। 0330571009 पर कॉल करें। क्लेम टीम रोदरहम को ऑनलाइन फेसबुक या theclaimteam.uk पर तलाश करें।
4: Do you want to make a difference in your community? Join the Interfaith Network in South Yorkshire and help raise awareness about early onset type 2 diabetes in young people aged 18 to 39. Diabetes affects millions across the UK, with ethnic minority groups often at higher risk. The NHS South Yorkshire Integrated Care Board and the Pakistan Muslim

0: 07419-299-729.
1: Nayab's Takeaway in Sheffield
2: is your perfect one-stop food hub. With an excellent array of succulent foods such as flame-grilled starters, Asian-style pizzas to your table at your home.
1: Nayab Takeaway.
2: Mega Deals will keep you coming back for more.
1: Just get khanon ke liye. Or visit nayabsonline.co.uk.
3: जे होएगी एक्सीडेंट फिकर ना करो फटाफट द क्लेम टीम की फोन करो अगर तुम टैक्सी चलाने हो तुम प्राइवेट हाथ चलाने हो या फिर कोई क्लाइंट की गड्डी ना एक्सीडेंट हो गया है तो द क्लेम टीम तुम्हारी खिदमत में हाजिर है जेडे शफील्ड दादरम गिरदो नवाले इलाके में टैक्सी ते प्राइवेट हायर गड्डी तुम मुहैया करने द क्लेम टीम अपने वादे ने मुताबिक 2000 पाउंड तक रेफरल फीस भी देने ने उन्होंने फोन नंबर है 03300571009 या विजिट करो 78 किंबरवर्थ रोड रादरम
4: Bringing communities together. Broadcasting from the Pakistan Muslim Center. Link FM. Link FM.
5: By advertising your products and services with a memorable campaign here on Link FM. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed, so find out more today. For details, click on linkfm.org or WhatsApp
6: 07939-849-339. तू सुन मेरी दुआ ये टूटा दिल मेरा तड़पता ही रहा है सदा
7: This is Ahmed Hussein and you're listening to Link FM
8: My name is Shireen
9: My name is Abdul Rahman
10: My name is Shai Mudashir
11: This is Rahul
1: Anywhere you go, Link FM is always there with you. Listen online at linkfm.org.
12: Link FM
1: 96.7 Link FM.
13: You are listening to Link FM 96.7.

0: Shireen.
1: My name is Abed Rahman.
2: My name is Saim Mudashir.
3: This is Rahul.
4: You are listening to Link FM 96.7.
5: Are you a taxi or private hire driver in Rotherham or Sheffield? Have you been involved in an accident? The claim team on Kimberworth Road, Rotherham is here to help you. We pay a £2,000 referral fee for non-fault taxi claims. Call us today on 0330 057 1009. That's 0330 057 1009. The claim team is here to help you get back on the road. Terms and conditions apply.
6: ITEC Commercial Refrigeration and Air Conditioning. अगर आपको रेस्टोरेंट, टेकअवे, दुकानों और तमाम कमर्शियल फ्रिज फ्रीजर, कोल्ड रूम और एयर कंडीशन की सर्विस और रिपेयरिंग की जरूरत है तो ITEC Commercial Refrigeration and Air Conditioning की तजुर्बाकार टीम आपके लिए हाजिर है. ITEC Commercial Refrigeration and Air Conditioning. Contact number 07955198814 and 07955198824.
7: क्या आप किसी तकरीब का एहतमाम कर रहे हैं? शादी, मेहंदी, मिलाद शरीफ या खत्मे कुरान, छोटी महफिल हो या बड़ा इज्तिमा, याद रखें, शाहिद केटरिंग सर्विस 30 साल से ज़ायद तजर्बे के साथ हम 30 से 5000 अफराद तक की तकरीबात के लिए मियारी और लजीज खाने का बेहतरीन इंतजाम करते हैं. हमारे यहाँ प्रोफेशनल केटरिंग स्टाफ सर्विस भी दस्तयाब है ताकि आप बेफिक्र होकर अपनी तकरीब एंजॉय करें. बेहतरीन मियार, जायका और बाएतमाद सर्विस, यही हमारी पहचान है. राबता करें 07796510422 या विजिट करें शाहिद केटरिंग सर्विस, पाकिस्तान मुस्लिम सेंटर, शेफील्ड. आपकी खुशियों का बेहतरीन इंतखाब.

अस्सलाम वालेकुम जी, मैं तुहाड़ा इफ्तखार ठाकुर पे बोलना ते तुसी सुनने हो पे लिंक FM 96.7। बहुत मजा है सीने।

0: are listening to Link FM.
1: Assalamu alaikum, my name is Arvi, and you are listening to Link FM.
2: Mazeer Solicitors is one of the established law firms in Sheffield, Firth Park. We provide quality, dedicated legal services to include residential and commercial conveyancing, wills and probate, power of attorneys, sale and purchase of businesses, commercial leases, immigration and estate planning, multilingual staff, competitive prices. Please call us on 0114 308 2727 or visit us online, mazeersolicitors.co.uk. Mazeer Solicitors is trading style of affinity, 7 Law Solicitors, regulated by Solicitors Regulation Authority.
3: अगर आपकी टैक्सी मिनी कैब प्राइवेट किराए पर लेने वाली गाड़ी या प्रेस्टीज कार हादसे का शिकार हुई है आपको क्लेम टीम से बात करने की जरूरत है वह मुकामी माहिरीन जो शेफील्ड और आसपास के इलाकों में मुतबादिल गाड़ी तेजी से मुहैया कर सकते हैं क्लेम टीम अपने दावे के मुताबिक 2000 पाउंड तक रेफरल फीस अदा करते हैं 0330571009 पर कॉल करें क्लेम टीम रोदरहम को ऑनलाइन फेसबुक या द क्लेम टीम डॉट यूके पर तलाश करें
4: Do you want to make a difference in your community? Join the Interfaith Network in South Yorkshire and help raise awareness about early onset type 2 diabetes in young people aged 18 to 39. Diabetes affects millions across the UK, with ethnic minority groups often at higher risk. The NHS South Yorkshire Integrated Care Board

0: तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे?
1: مرج البحرين يلتقيان
0: उसी ने दो दरिया रवां किए जो आपस में मिलते हैं.
1: بينهما برزخ لا يبغيان
0: मगर दोनों में एक आड़ है कि उससे तजावुज नहीं कर सकते.

0: तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे?
1: يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان
0: उन दोनों दरियाओं से मोती और मूंगे निकलते हैं।

0: 07419-299-729.
1: Nayab's Takeaway in Sheffield
2: is your perfect one-stop food hub. With an excellent array of succulent foods such as flame-grilled starters, Asian-style pizzas to your table at your home.
1: Nayab Takeaway.
2: Mega deals will keep you coming back for more.
1: Jiske khane ke liye sab. Or visit nayabsonline.co.uk.
3: जे होएगी एक्सीडेंट फिकर ना करो फटाफट द क्लेम टीम की फोन करो अगर तुम टैक्सी चलाने हो तुम प्राइवेट हाथ चलाने हो या फिर कोई क्राइम की गड्डी ना एक्सीडेंट हो गया है तो द क्लेम टीम तुम्हारी खिदमत में हाजिर है जेडे शफील्ड दादरम गिरदो नवाले इलाके में टैक्सी ते प्राइवेट हायर गड्डी तुम मुहैया करने द क्लेम टीम अपने वादे ने मुताबिक 2000 पाउंड तक रेफरल फीस भी देने ने उन्होंने फोन नंबर है 03300571009 या विजिट करो 78 किंबरवर्थ रोड रादरम
4: Bringing communities together. Broadcasting from the Pakistan Muslim Center. Link FM. Link FM.
5: By advertising your products and services with a memorable campaign here on Link FM. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed, so find out more today. For details, click on linkfm.org or WhatsApp
6: 07939-849-339. तू सुन मेरी दुआ ये टूटा दिल मेरा तड़पता ही रहा है सदा
7: This is Ahmed Hussein and you're listening to Link FM
8: My name is Shireen
9: My name is Abed Rahman
10: My name is Shai Mudashir
11: This is Rahul
4: Anywhere you go, Link FM is always there with you. Listen online at linkfm.org.
7: Link FM.
4: This is Link FM.

0: listening to Link FM.
1: Assalamu alaikum, main Naeem Azharvi aur tusan sun rahe ho Link FM.
2: From residential and commercial conveyancing to wills, probate and immigration matters, we've got you covered. We have multilingual staff to support you and amazing feedback, busier solicitors, legal expertise you can trust. Visit us at 61 Billhouse Road, Sheffield, or call 0114 308 2727. Nazir Solicitors is trading style of Affinity 7 Law Solicitors, regulated by Solicitors Regulation Authority.
3: अगर आपकी टैक्सी, मिनी कैब, प्राइवेट किराया पर लेने वाली गाड़ी या प्रेस्टीज कार हादसे का शिकार हुई है, आपको क्लेम टीम से बात करने की जरूरत है। वह मुकामी माहिरीन जो शेफील्ड और आसपास के इलाकों में मुतबादिल गाड़ी तेजी से मुहैया कर सकते हैं। क्लेम टीम अपने दावे के मुताबिक £2,000 तक रेफरल फीस अदा करते हैं। 0330571009 पर कॉल करें। क्लेम टीम रोदरहम को ऑनलाइन फेसबुक या द क्लेम टीम .uk पर तलाश करें।
4: Do you want to make a difference in your community? Join the Interfaith Network in South Yorkshire and help raise awareness about early onset type 2 diabetes in young people aged 18 to 39. Diabetes affects millions.

0: Bradford Asian Radio, medium wave 1430. Bradford Asian Radio. आपके दिलों में रस खाने वाले
1: सब दूसरे साथ
0: Bradford Asian Radio, medium wave 1430. Bradford Asian.

0: call 07419-299-729.
1: Nayab's Takeaway in Sheffield
2: is your perfect one-stop food hub. With an excellent array of succulent foods such as flame-grilled starters, Asian-style pizzas to your table at your home.
1: Nayab Takeaway.
2: Mega deals will keep you coming back for more.
1: Jiske khane ke liye sab. Or visit nayabsonline.co.uk.
3: जे होएगी एक्सीडेंट फिकर ना करो फटाफट द क्लेम टीम की फोन करो अगर तुम टैक्सी चलाने हो तुम प्राइवेट हाथ चलाने हो या फिर कोई क्राइम की गड्डी ना एक्सीडेंट हो गया है तो द क्लेम टीम तुम्हारी खिदमत में हाजिर है जेडे शफील्ड दादरम गिरदो नवाले इलाकों में टैक्सी ते प्राइवेट हायर गड्डी तुम्हारी मुहैया करने द क्लेम टीम अपने वादे ने मुताबिक 2000 पाउंड तक रेफरल फीस भी देने ने उन्होंने फोन नंबर है 03300571009 या विजिट करो 78 किंबरवर्थ रोड रादरम
4: Bringing communities together. Broadcasting from the Pakistan Muslim Centre, Link FM. Link FM.
5: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Link FM. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed, so find out more today. For details, click on linkfm.org or WhatsApp 07939-849-339.
6: Tu sabka hai khuda, tu sun meri dua, ye toota dil mera tarpata hi raha hai sada. Tu sabka hai khuda, तू सुन मेरी दुआ ये टूटा दिल मेरा तड़पता ही रहा है सदा
7: This is Ahmed Hussein and you're listening to Link FM
8: My name is Shireen
9: My name is Abdul Rahman
10: My name is Sai Mudashir
11: This is Rahul
8: My
4: Anywhere you go, Link FM is always there with you. Listen online at linkfm.org.
7: Link FM.
12: मैं हूं अली अब्बास और आप सुन रहे हैं Link FM 96.7 FM.

0: want to make a difference in your community? Join the Interfaith Network in South Yorkshire and help raise awareness about early onset type 2 diabetes in young people aged 18 to 39. Diabetes affects millions across the UK, with ethnic minority groups often at higher risk. The NHS South Yorkshire Interfaith Network.
1: My name's Shireen.
2: My name is Abed Rahman.
3: My name is Simon Bashir.
4: This is Rahan.
5: You are listening to Link FM 96.7.
6: Are you a taxi or private hire driver in Rotherham or Sheffield? Have you been involved in an accident? The claim team on Kimberworth Road, Rotherham is here to help you. We pay a £2,000 referral fee for non-fault taxi claims. Call us today on 0330 057 1009. That's 0330 057 1009. The claim team is here to help you get back on the road. Terms and conditions apply.
7: ITEC Commercial Refrigeration and Air Conditioning. अगर आपको रेस्टोरेंट टेक अवे दुकानों और तमाम कमर्शियल फ्रिज फ्रीजर कोल्ड रूम और एयर कंडीशन की सर्विस और रिपेयरिंग की जरूरत है तो आईटेक कमर्शियल रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग की तजुर्बाकार टीम आपके लिए हाजिर है आईटेक कमर्शियल रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग कॉन्टेक्ट नंबर 07955198814 एंड 07955198824
8: क्या आप किसी तकरीब का एहतमाम कर रहे हैं शादी मेहंदी मिलाद शरीफ या खत्मे कुरान छोटी महफिल हो या बड़ा इज्तिमा याद रखें शाहिद कैटरिंग सर्विस 30 साल से ज्यादा तजुर्बे के साथ हम 30 से 5000 अफराद तक की तकरीबात के लिए मियारी और लजीज खाने का बेहतरीन इंतजाम करते हैं हमारे यहाँ प्रोफेशनल कैटरिंग स्टाफ सर्विस भी दस्तयाब है ताकि आप बेफिक्र होकर अपनी तकरीब एंजॉय करें
9: और इसके अतराफ में नमाज़े ज़ुहर का वक्त हुआ चाहता है

और मुनफरिद अंदाज रंगारंग प्रोग्रामों के साथ लिंक एफएम हर लम्हा हर जगह।

0: You are listening to Link FM.
1: Assalamu alaikum, main hoon Naeem Azharvi aur tusan sun rahe ho Link FM.
2: Lizzie Solicitors is one of the established law firms in Sheffield, Firth Park. We provide quality, dedicated legal services to include residential and commercial conveyancing, wills and probate, power of attorneys, sale and purchase of businesses, commercial leases, immigration and estate planning, multilingual staff, competitive prices. Please call us on 0114 308 2727 or visit us online, naziasolicitors.co.uk. Nazir Solicitors is trading style of affinity, 7 Law Solicitors, regulated by Solicitors Regulation Authority.
3: अगर आपकी टैक्सी मिनी कैब प्राइवेट किराया पर लेने वाली गाड़ी या प्रेस्टीज कार हादसे का शिकार हुई है आपको क्लेम टीम से बात करने की जरूरत है वह मुकामी माहिरीन जो शेफील्ड और आसपास के इलाकों में मुतबादिल गाड़ी तेजी से मुहैया कर सकते हैं क्लेम टीम अपने दावे के मुताबिक 2000 पाउंड तक रेफरल फीस अदा करते हैं 0330571009 पर कॉल करें क्लेम टीम रोदरहम को ऑनलाइन फेसबुक या theclaimteam.uk पर तलाश करें
4: Do you want to make a difference in your community? Join the Interfaith Network in South Yorkshire and help raise awareness about early onset type 2 diabetes in young people aged 18 to 39. Diabetes affects

0: 07419-299-729.
1: Nayab's Takeaway in Sheffield
2: is your perfect one-stop food hub. With an excellent array of succulent foods such as flame-grilled starters, Asian-style pizzas to your table at your home.
1: Nayab Takeaway.
2: Mega deals will keep you coming back for more.
1: Jiske khane ke liye sab. Or visit nayabsonline.co.uk.
3: एक्सीडेंट हो गया रफा
4: जे होएगी एक्सीडेंट फिकर ना करो फटाफट द क्लेम टीम की फोन करो अगर तुम टैक्सी चलाने हो तुम प्राइवेट हर चलाने हो या फिर कोई क्लाइंट गड्डी ना एक्सीडेंट हो गया ते द क्लेम टीम तुसानी खिदमत विच हाजिर है जेड़े शफील्ड दादरम ते गिरदोन वाले इलाके विच टैक्सी ते प्राइवेट हायर गड्डी तुसा की मुहैया करने द क्लेम टीम अपने वादे ने मुताबिक 2000 पाउंड तक रेफरल फीस भी देने ने उन्हां दा फोन नंबर है 033-00-571-009 या विजिट करो 78 किंबरवर्थ रोड रादरम
5: Bringing communities together. Broadcasting from the Pakistan Muslim Center. Link FM. Link FM.
6: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Link FM. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed, so find out more today. For details, click on linkfm.org or WhatsApp
7: 07939-849-339. तू सुन मेरी दुआ ये टूटा दिल मेरा तड़पता ही रहा है सदा
8: This is Ahmed Hussein and you're listening to Link FM
9: My name is Shireen
10: My name is Abed Rahman
11: My name is Shai Mudashir
12: This is Rahul
1: Anywhere you go, Link FM is always there with you. Listen online at linkfm.org.
13: Link FM.
1: Link FM, your number one community radio station.

0: Link FM Sheffield. Link FM.
1: तुक हिरसो हवस की छोड़ मियां, मत देश बदेश फिरे मारा, कज़ाक अजल का लूटे है, दिन रात बजा कर नकारा, क्या बदिया भैंसा बैल शुतर, क्या गूनी पल्ला सरबारा, क्या गेहूं चावल मोट मटर, क्या आग धुआं और अंगारा, सब ठाट पड़ा रह जाएगा जब लाद चलेगा बंजारा।

0: I'm Shireen.
1: My name is Abed Rahman.
2: My name is Shaim Mudashir.
3: This is Rahul.
4: You are listening to Link FM 96.7.
5: Are you a taxi or private hire driver in Rotherham or Sheffield? Have you been involved in an accident? The claim team on Kimberworth Road, Rotherham is here to help you. We pay a £2,000 referral fee for non-fault taxi claims. Call us today on 0330 057 1009. That's 0330 057 1009. The claim team is here to help you get back on the road. Terms and conditions apply.
6: iTech Commercial Refrigeration and Air Conditioning. अगर आपको रेस्टोरेंट, टेक अवे, दुकानों और तमाम कमर्शियल फ्रिज फ्रीजर कोल्ड रूम और एयर कंडीशन की सर्विस और रिपेयरिंग की जरूरत है तो iTech Commercial Refrigeration and Air Conditioning की तजुर्बाकार टीम आपके लिए हाजिर है iTech Commercial Refrigeration and Air Conditioning कॉन्टैक्ट नंबर 07955198814 एंड 07955198824।
7: क्या आप किसी तकरीब का एहतमाम कर रहे हैं? शादी, मेहंदी, मिलाद शरीफ या खत्मे कुरान, छोटी महफिल हो या बड़ा इज्तिमा, याद रखें, शाहिद केटरिंग सर्विस 30 साल से ज्यादा तजुर्बे के साथ हम 30 से 5000 अफराद तक की तकरीबात के लिए मियारी और लजीज खाने का बेहतरीन इंतजाम करते हैं। हमारे यहाँ प्रोफेशनल केटरिंग स्टाफ सर्विस भी दस्तयाब है ताकि आप बेफिक्र होकर अपनी तकरीब एंजॉय करें। बेहतरीन मियार, जायका और बाएतमाद सर्विस, यही हमारी पहचान है। राबता करें 07796510422 या विजिट करें शाहिद केटरिंग सर्विस, पाकिस्तान मुस्लिम सेंटर, शेफील्ड। आपकी खुशियों का बेहतरीन इंतखाब।
8: By advertising your products and services with a memorable campaign here on Link FM. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed, so find out more today. For details, click on linkfm.org or WhatsApp 07939 849 339.
9: Sheffield's very own community radio station.
10: Link FM.
0: My name is Shireen.
1: My name is Abed Rahman.
2: My name is Shaim Mudashir.
3: This is Rahul.
9: Anywhere you go, Link FM is always there with you. Listen online at linkfm.org.
10: Link FM.
1: Hi.
0: Keep listening to me.

धड़कन की आवाज है लिंक एफएम, मोहब्बत भरा अंदाज है लिंक एफएम, सुबह की रोशनी शाम की महफिल, हर दिल का राज है लिंक एफएम। दिल से आपके साथ

0: Sheffield. On 96.7 FM, online, on smartphone and tablet, this is Link FM.
1: जहाँ हर लफ्ज दिल से निकले और हर सूर दिल को छो जाए,
2: वही है लिंक एफएम।
1: दिल से आपके साथ
2: लिंक एफएम।

दिल से दिल को मिलाता, हर रंग हर आवाज को सजाता। आपका अपना रेडियो स्टेशन, दिल से आपके साथ, लिंक एफएम शेफील्ड।

0: listening to Link FM.
1: Assalamu alaikum, main hoon Naeem Azharvi aur tum sun rahe ho Link FM.
2: From residential and commercial conveyancing to wills, probate and immigration matters, we've got you covered. We have multilingual staff to support you and amazing feedback, busier solicitors, legal expertise you can trust. Visit us at 61 Billhouse Road, Sheffield, or call 0114 308 2727. The Zia Solicitors is trading style of affinity, 7 law solicitors, regulated by Solicitors Regulation Authority.
3: अगर आपकी टैक्सी, मिनी कैब, प्राइवेट किराया पर लेने वाली गाड़ी या प्रेस्टीज कार हादसे का शिकार हुई है, आपको क्लेम टीम से बात करने की जरूरत है। वह मुकामी माहिरीन जो शेफील्ड और आसपास के इलाकों में मुतबादिल गाड़ी तेजी से मुहैया कर सकते हैं। क्लेम टीम अपने दावे के मुताबिक £2,000 तक रेफरल फीस अदा करते हैं। 0330571009 पर कॉल करें। क्लेम टीम रोदरहम को ऑनलाइन, फेसबुक या theclaimteam.uk पर तलाश करें।
4: Do you want to make a difference in your community? Join the Interfaith Network in South Yorkshire and help raise awareness about early onset type 2 diabetes in young people aged 18 to 39. Diabetes affects millions across the UK, with ethnic minority groups often at higher risk. The NHS South Yorkshire Integrated Care Board and the Pakistan Muslim Centre in Sheffield have

0: If you're looking to promote your business on Link FM, call our sales team now on 0114 261 8182 or email info@linkfm.org.
1: Wherever you go, Link FM is there for you. Download our app, Link FM 967, or simply search Link FM Live on Google.
2: हर धड़कन की आवाज है लिंक एफएम, मोहब्बत भरा अंदाज है लिंक एफएम, सुबह की रोशनी शाम की महफिल, हर दिल का राज है लिंक एफएम, दिल से आपके साथ लिंक एफएम।

हर धड़कन की आवाज है लिंक एफएम, मोहब्बत भरा अंदाज है लिंक एफएम, सुबह की रोशनी शाम की महफिल, हर दिल का राज है लिंक एफएम, दिल से आपके साथ लिंक।

0: 96.7 FM.
1: जहाँ हर लफ्ज दिल से निकले और हर सूर दिल को छो जाए,
2: वही है लिंक FM.
1: दिल से आपके साथ
2: लिंक FM Sheffield.
3: हर धड़कन की आवाज है लिंक FM. मोहब्बत भरा अंदाज है लिंक FM. सुबह की रोशनी, शाम की महफिल, हर दिल का राज है लिंक FM. दिल से आपके साथ
2: लिंक

0: Music, community, conversation, and positive vibes. This is Link FM, broadcasting 24 hours a day, 7 days a week.
1: This is Link FM.
2: दिल से दिल को मिलाता, हर रंग हर आवाज को सजाता, आपका अपना रेडियो स्टेशन, दिल से आपके साथ,
3: Link FM Sheffield.
4: You're listening to Link FM on 96.7 FM, linking communities, thinking positive across South Yorkshire.

0: You're listening to Link FM.
1: Assalamu alaikum, main hoon Naeem Azharvi aur tusan sun rahe ho Link FM.
2: Mazeer Solicitors is one of the established law firms in Sheffield, Firth Park. We provide quality, dedicated legal services to include residential and commercial conveyancing, wills and probate, power of attorneys, sale and purchase of businesses, commercial leases, immigration and estate planning, multilingual staff, competitive prices. Please call us on 0114 308 2727 or visit us online, mazeersolicitors.co.uk. Mazeer Solicitors is trading style of affinity, 7 Law Solicitors, regulated by Solicitors Regulation Authority.
3: अगर आपकी टैक्सी, मिनी कैब, प्राइवेट किराया पर लेने वाली गाड़ी या प्रेस्टीज कार हादसे का शिकार हुई है, आपको क्लेम टीम से बात करने की जरूरत है। वह मुकामी माहिरीन जो शेफील्ड और आसपास के इलाकों में मुतबादिल गाड़ी तेजी से मुहैया कर सकते हैं। क्लेम टीम अपने दावे के मुताबिक 2000 पाउंड तक रेफरल फीस अदा करते हैं। 0330571009 पर कॉल करें। क्लेम टीम रोदरहम को ऑनलाइन फेसबुक या theclaimteam.uk पर तलाश करें।
4: Do you want to make a difference in your community? Join the Interfaith Network in South Yorkshire and help raise awareness about early onset type 2 diabetes in young people aged 18 to 39. Diabetes affects millions across the UK, with ethnic minority groups often at higher risk. The NHS South Yorkshire Integrated Care Board and the Pakistan Muslim Centre in

0: Link FM for the latest local, national and international news. Link FM, Sheffield.
1: बच्चों की हिफाजती वैक्सीन आपके बच्चों को बेहतरीन तहफ्फुज़ फराहम करती हैं और हर साल इंग्लैंड में 5000 से ज़ायद अमवात को रोकने में मददगार साबित होती हैं। बचपन की बीमारियां, संगीन अमराज, अस्पताल में दाखिले और उम्र भर की माजूरी का बाइस बन सकती हैं। खसरा और काली खांसी जैसी बचपन की बीमारियां अब भी मौजूद हैं और हमारी कम्युनिटीज में तेजी से फैलती हैं। अगर आपके बच्चे को वैक्सीन नहीं लगी तो वो महफूज नहीं। NHS की जानिब से फराहम की जाने वाली तमाम बचपन की वैक्सीन दुनिया भर में लाखों बच्चों को दी गई है और उनका हिफाजती रिकॉर्ड बेहतरीन है। बेहतरीन तहफ्फुज के लिए वैक्सीन वक्त पर लगवाना निहायत जरूरी है, लेकिन अगर आपके बच्चे की कोई वैक्सीन रह गई है तो अपने GP डॉक्टर से राबता करके उसे मुकम्मल करवाएं। क्या आपके बच्चे की वैक्सीन वक्त पर लग चुकी है? उनकी रेड बुक चेक करें या उनके GP से बात करें। मजीद मालूमात के लिए विजिट करें nhs.uk/childhoodvaccination।
2: हर धड़कन की आवाज है लिंक FM, मोहब्बत भरा अंदाज है लिंक FM, सुबह की रोशनी, शाम की महफिल, हर दिल का राज है लिंक FM। दिल से आपके साथ
3: लिंक FM Sheffield।
4: Would you like to gain experience whilst building up your CV? Link FM is looking for admin workers, graphic designers, researchers, producers, editors and presenters. Do you think you have an idea? Contact the office on 0114 261 8182.
5: From Sheffield to the world, this is Link FM, your community radio station.
6: Do you want to make a difference in your community? Join the Interfaith Network in South Yorkshire and help raise awareness about early onset type 2 diabetes in young people aged 18 to 39. Diabetes affects millions across the UK, with ethnic minority groups often at higher risk. The NHS South Yorkshire Integrated Care Board and the Pakistan Muslim Centre in

0: listening to Link FM 96.7.
1: Are you a taxi or private hire driver in Rotherham or Sheffield? Have you been involved in an accident? The claim team on Kimberworth Road, Rotherham is here to help you. We pay a £2,000 referral fee for non-fault taxi claims. Call us today on 0330 057 1009. That's 0330 057 1009. The claim team is here to help you get back on the road. Terms and conditions apply.
2: ITEC Commercial Refrigeration and Air Conditioning. अगर आपको रेस्टोरेंट, टेक अवे, दुकानों और तमाम कमर्शियल फ्रिज फ्रीजर कोल्ड रूम और एयर कंडीशन की सर्विस और रिपेयरिंग की जरूरत है तो आई टेक कमर्शियल रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनर की तजुर्बाकार टीम आपके लिए हाजिर है आई टेक कमर्शियल रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग कॉन्टेक्ट नंबर 07955198814 एंड 07955198824
3: क्या आप किसी तकरीब का एहतमाम कर रहे हैं शादी मेहंदी मिलाद शरीफ या खत्मे कुरान छोटी महफिल हो या बड़ा इज्तिमा याद रखें शाहिद केटरिंग सर्विस 30 साल से ज्यादा तजुर्बे के साथ हम 30 से 5000 अफराद तक की तकरीबात के लिए मियारी और लजीज खाने का बेहतरीन इंतजाम करते हैं हमारे यहाँ प्रोफेशनल केटरिंग स्टाफ सर्विस भी दस्तयाब है ताकि आप बेफिक्र होकर अपनी तकरीब एंजॉय करें बेहतरीन मियार जायका और बाएतमाद सर्विस यही हमारी पहचान है राबता करें 07796510422 या विजिट करें शाहिद केटरिंग सर्विस पाकिस्तान मुस्लिम सेंटर शेफील्ड आपकी खुशियों का बेहतरीन इंतखाब
4: By advertising your products and services with a memorable campaign here on Link FM. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed, so find out more today. For details, click on linkfm.org or WhatsApp 07939 849 339.
5: Sheffield's very own community radio station.
6: Link FM.
7: My name is Shireen.
8: My name is Abed Rahman.
9: My name is Saim Mudashir.
10: This is Rahul.
5: Anywhere you go, Link FM is always there with you. Listen online at linkfm.org.
6: Link FM.
11: Music, community, conversation, and positive vibes. This is Link FM, broadcasting 24 hours a day.

0: अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फारूक रशीद।
1: मैं और रणदीप चौधरी।
2: मैं असलम भुट्टा।
3: मैं जी हुसैन कपूर शफील से।
4: मेरा नाम इशफाक हुसैन क्यानी है।
5: मेरा नाम अहमद अफकर है।
6: मैं अरशद खान शफील से हूं।
7: मेरा नाम अंजुम अफताब है।
8: मेरा नाम इमरानी है। 96.7।

0: कन की आवाज है लिंक एफएम, मोहब्बत भरा अंदाज है लिंक एफएम, सुबह की रोशनी शाम की महफिल, हर दिल का राज है लिंक एफएम, दिल से आपके साथ लिंक एफएम शेफील्ड।
1: बरसों हो गए बिछड़े, अब साथ नहीं हो तुम, फिर ऐसा क्यों लगता है जहां मैं हूं वहीं हो तुम। क्या करूं मैं अपनी उंगलियों का, किसी की भी तस्वीर बनाऊं तुम्हारी बन जाती है। ये सिर्फ मेरा पागलपन है या

0: Music, community, conversation, and positive vibes. This is Link FM, broadcasting 24 hours a day, 7 days a week.
1: This is Link FM.
2: हर धड़कन की आवाज है लिंक एफएम, मोहब्बत भरा अंदाज है लिंक एफएम, सुबह की रोशनी शाम की महफिल, हर दिल का राज है लिंक एफएम, दिल से आपके साथ
3: लिंक एफएम

0: फैन की आवाज है लिंक एफएम, मोहब्बत भरा अंदाज है लिंक एफएम, सुबह की रोशनी शाम की महफिल, हर दिल का राज है लिंक एफएम, दिल से आपके साथ लिंक एफएम
1: शेफील्ड, लिंकिंग कम्युनिटीज, थिंकिंग पॉजिटिव, दिस इज लिंक एफएम।
0: दिल से दिल को मिलाता, हर रंग हर आवाज को सजाता, आपका अपना रेडियो स्टेशन, दिल से आपके साथ लिंक एफएम शेफील्ड।

0: listening to Link FM.
1: Assalamu alaikum, main hoon Naeem Azharvi aur tusan sun rahe ho Link FM.
2: From residential and commercial conveyancing to wills, probate and immigration matters, we've got you covered. We have multilingual staff to support you and amazing feedback. Azir Solicitors, legal expertise you can trust. Visit us at 61 Billhouse Road, Sheffield, or call 0114 308 2727. The Azir Solicitors is trading style of affinity 7 Law Solicitors, regulated by Solicitors Regulation Authority.
3: अगर आपकी टैक्सी, मिनी कैब, प्राइवेट किराया पर लेने वाली गाड़ी या प्रेस्टीज कार हादसे का शिकार हुई है, आपको क्लेम टीम से बात करने की जरूरत है। वह मुकामी माहिरीन जो शेफील्ड और आसपास के इलाकों में मुतबादिल गाड़ी तेजी से मुहैया कर सकते हैं। क्लेम टीम अपने दावे के मुताबिक £2,000 तक रेफरल फीस अदा करते हैं। 0330571009 पर कॉल करें। क्लेम टीम रोदरहम को ऑनलाइन फेसबुक या theclaimteam.uk पर तलाश करें।
4: Do you want to make a difference in your community? Join the Interfaith Network in South Yorkshire and help raise awareness about early onset type 2 diabetes in young people aged 18 to 39. Diabetes affects millions across the UK, with ethnic minority groups often at higher risk. The NHS South Yorkshire Integrated Care Board and the Pakistan Muslim Centre in Sheffield

0: 0749 299 729.
1: Nayab's Takeaway in Sheffield
2: is your perfect one-stop food hub. With an excellent array of succulent foods such as flame-grilled starters, Asian-style pizzas, to your table at your home.
1: Nayab Takeaway.
2: Mega deals will keep you coming back for more.
1: Jiske khane ke liye sab. Or visit nayabsonline.co.uk.
3: जे होएगी एक्सीडेंट फिकर ना करो फटाफट द क्लेम टीम की फोन करो अगर तुम टैक्सी चलाने हो तुम प्राइवेट हर चलाने हो या फिर कोई क्राइन गड्डी ना एक्सीडेंट होई गया है द क्लेम टीम तुसने खिदमत विच हाजिर है जेड़े शफील्ड दादरम गिरदोन वाले इलाके विच टैक्सी ते प्राइवेट हायर गड्डी तुसा की मुहैया करने द क्लेम टीम अपने वादे ने मुताबिक 2000 पाउंड तक रेफरल फीस भी देने ने उन्होंने फोन नंबर है 0330571009 या विजिट करो 78 किंबरवर्थ रोड रादरम
4: Bringing communities together. Broadcasting from the Pakistan Muslim Center. Link FM. Link FM.
5: By advertising your products and services with a memorable campaign here on Link FM. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed, so find out more today. For details, click on linkfm.org or WhatsApp
6: 0739-849-339. तू सुन मेरी दुआ ये टूटा दिल मेरा तड़पता ही रहा है सदा
7: This is Ahmed Hussein and you're listening to Link FM
8: My name is Shireen
9: My name is Abed Rahman
10: My name is Shai Mudashir
11: This is Rahul
8: My
4: Anywhere you go, Link FM is always there with you. Listen online at linkfm.org.
12: Link FM.

0: name is Shireen.
1: My name is Abdul Rahman.
2: My name is Shai Mudashir.
3: This is Rahul.
4: You are listening to Link FM 96.7.
5: Are you a taxi or private hire driver in Rotherham or Sheffield? Have you been involved in an accident? The claim team on Kimberworth Road, Rotherham is here to help you. We pay a £2,000 referral fee for non-fault taxi claims. Call us today on 0330 057 1009. That's 0330 057 1009. The claim team is here to help you get back on the road. Terms and conditions apply.
6: iTech Commercial Refrigeration and Air Conditioning. अगर आपको रेस्टोरेंट टेक अवे दुकानों और तमाम कमर्शियल फ्रिज फ्रीजर कोल्ड रूम और एयर कंडीशन की सर्विस और रिपेयरिंग की जरूरत है तो iTech Commercial Refrigeration and Air Conditioning की तजुर्बाकार टीम आपके लिए हाजिर है. iTech Commercial Refrigeration and Air Conditioning. Contact number 07955198814 and 07955198824.
7: क्या आप किसी तकरीब का एहतमाम कर रहे हैं? शादी, मेहंदी, मिलाद शरीफ या खत्मे कुरान, छोटी महफिल हो या बड़ा इज्तिमा, याद रखें शाहिद केटरिंग सर्विस 30 साल से ज्यादा तजुर्बे के साथ हम 30 से 5000 अफराद तक की तकरीबात के लिए मियारी और लजीज खाने का बेहतरीन इंतजाम करते हैं. हमारे यहाँ प्रोफेशनल केटरिंग स्टाफ सर्विस भी दस्तयाब है ताकि आप बेफिक्र होकर अपनी तकरीब एंजॉय करें. बेहतरीन मियार, जायका और बाएतमाद सर्विस, यही हमारी पहचान है. राबता करें 07796510422 या विजिट करें शाहिद केटरिंग सर्विस, पाकिस्तान मुस्लिम सेंटर, शेफील्ड. आपकी खुशियों का बेहतरीन इंतखाब.
8: By advertising your products and services with a memorable campaign here on Link FM. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed, so find out more today. For details, click on linkfm.org or WhatsApp 07939 849 339.
9: Sheffield's very own community radio station.
10: Link FM.
0: My name is Shireen.
1: My name is Abdul Rahman.
2: My name is Shai Mudashir.
3: This is Rahul.
9: Anywhere you go, Link FM is always there with you. Listen online at linkfm.org.
10: Link FM.
9: The voice of the communities. 96.7 Link FM.
10: Link FM.

0: listening to Link FM.
1: Assalamu alaikum, main hoon Naeem Azharvi aur tusi sun rahe ho Link FM.
2: Vizier Solicitors is one of the established law firms in Sheffield, Firth Park. We provide quality, dedicated legal services to include residential and commercial conveyancing, wills and probate, power of attorneys, sale and purchase of businesses, commercial leases, immigration and estate planning, multilingual staff, competitive prices. Please call us on 0114 308 2727 or visit us online, naziersolicitors.co.uk. Nazir Solicitors is trading style of affinity, 7 Law Solicitors, regulated by Solicitors Regulation Authority.
3: अगर आपकी टैक्सी मिनी कैब प्राइवेट किराया पर लेने वाली गाड़ी या प्रेस्टीज कार हादसे का शिकार हुई है आपको क्लेम टीम से बात करने की जरूरत है वह मुकामी माहिरीन जो शेफील्ड और आसपास के इलाकों में मुतबादिल गाड़ी तेजी से मुहैया कर सकते हैं क्लेम टीम अपने दावे के मुताबिक 2000 पाउंड तक रेफरल फीस अदा करते हैं 0333-00-57-1009 पर कॉल करें क्लेम टीम रोदरहम को ऑनलाइन फेसबुक या theclaimteam.uk पर तलाश करें
4: Do you want to make a difference in your community? Join the Interfaith Network in South Yorkshire and help raise awareness about early onset type 2 diabetes in young people aged 18 to 39. Diabetes affects millions